गुरु नानक पातशाह कहन लगे, सिद्ध बोलन सुन नानका, तोए जग नू क्या करा मात दिखाई, कुछ विखाले असानू भी तू क्यों ढिल अवे लाई। बाबा बोले नाथ जी असा वेखने जोगी वस्त न काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। शिव रूपी करता पुरख चले नाही तरत चलाई, सिद्ध तंत्र मंत्र कर चढ़ पे शब्द गुरु के कला छपाई। ददे दाता गुरु है कके कीमत किने न पाई, सो दीन नानक सतगुर शरणाई। बाबा बोले नाथ जी शब्द सुनो सच मुखो अलाई, बाजो सच्चे नाम दे होर करा मात असा ते नाही बस्तर पैरो अगन के। बाबे ने आख्या सिद्धो बेशक कोई इतनी योग तपस्या कर लवे के अगन दे बस्तर पैर लवे, इतने तंत्र मंत्र दा जानू हो जावे। बर्फ हिमालय मंदर शाई, हिमालय पर्वत ते अपना घर बना लवे, ते जदों उसनू भुख लगे लोहे दी रसोई करे, भाव रोटी दी थां ते लोहा चबाउन लग जावे। एडियां रिधियां सिद्धियां आ जान, करै रसोई सार दी सगली धरती नथ चलाई, सारी धरती नू नथ पा लवे। एवड करी विथार को सगली धरती हकी जाई, तोली तरत आकाश दोए पिछे शाबे टंक चढ़ाई। ऐडी करा मात दा मालक बन जावे, धरती ते आकाश नू तोल के दस देवे। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ए बल रखा आप विच, फिर ए बल अपने विच भी होवे, चे जिदे सिर ते हाथ रखे ए बल उदे विच भी आ जावे। एडी वड्डी समर्था दा मालक बेशक कोई बन जावे, ते हजूर कहंदियां बिना नाम तो ए सत नाम बिन बादर शाही। एक बदला दी शां है जेडी कदे एक थां ते टिकदी नहीं, जिदी कोई वैल्यू नहीं होंदी। इसलिए हजूर ने कहा भाई ए कर्म धर्म पाखंड जो दिशे तिन जम जागाती लूटै। आख्या जे मनुष्या जन्म सफल करना है ता निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। ऐसे सच दे बचन जदों सिद्धा ने सुने, मन नू हलूना वज्या, ता फिर ओही सिद्ध जेड़े बड़े क्रोधित हो रहे सन, गुरु नानक सच्चे पातशाह।

इस संसार सागर विच किते मैं डुब ना जावां, इस संसार दे पदार्थां विच किते रुल ना जावां, इस लई तू मेरी बांह पकड़। क्योंकि असी कमजोर हां, असी पकड़िए हाथ छुट जाएगा, इसलिए मोको बाहां दे बीठला मेरी पकड़ो जीवा। जिवें भाई साहब नंद लाल जी ने अरदास कीती, सतगुर प्याल प्याला मैनू दिल दे रंगन वाला, होवन दूर मुश्किलां सबे थीवे मन मत वाला। जे अपने दर घर दा नाम दे देवे सानू, तैनू की फर्क पवेगा। साडा मन भी मतवाला हो गया तां फिर संसार वल क्यों खचित होवेगा। जे साडी बांह तू फड़ दवे तां फिर संसार विच लुभाए मान करन वालियां वस्तुआं साडा कुछ नहीं विगाड़ सकनगियां। इसलिए कर कृपा, सदा पकड़ो मेरी बांह, ऐथे ओथे जिथे किथे जिउंदे मोए असी तेरे हां। हे निरंकार मेरी बांह पकड़ ले, कृपा कर।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं, ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे।

तू बेअंत को बिगला जाने को बिगला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

और मुल्तान दी धरती ते फिर भाई सोमे ने गुरु नानक दे दर दा प्रचार कीता। उना दे खानदान विचों अज भी गुरु नानक दे दर दा प्रचार करदे हन। और गुरु नानक गुरु रामदास पातशाह जी ने जिसनु कहा सी ना सोमा शाह, अज उना दे घर कोई छोटा बच्चा भी बैठा होवे उसनु भी शाह जी करके पुकार दे हन। जिनू गुरु रामदास पातशाह शहन शाहियां बख्श देवे साथ संगत, ओ फिर रहंदी दुनिया तक शाही रहनगे। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए गुरु नानक, गुरु नानक नू जिन्हां ने भाई प्यार दे नाल सिदक दे नाल ते आया फिर उन्हां नू किसे गल दी कमी नहीं रही। गुरु अर्जन दे पातशाह बख्शिश करदे हन, मैं मूर्ख की केतक बात है। और गुरु नानक दे दर दी जिन्हां ने कामना करके सेवा कीती उन्हां दियां मनोकामना पूरियां होईयां हन। ते जिन्हां ने गुरु नानक दे घर नू अपना घर समझ के निष्कामता दे नाल सेवा कीती ओ गुरु नानक दा रूप ही बन गए, गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इसलिए मैं मूर्ख की

गंगा अज समा मिले सात संगत की सेवा कर ली हसूर कंजनी गंगा असी भी अज अपने तन का चोला रंग ली मात गंगा जी ने आख्या पाछया तुहाडे चरणां ते जिहड़ा भी आके मत्था टेक लैंदा उहदा तन दा भी चोला रंगिया गया ते मन दा भी रंगिया गया नहीं गंगा अजे भी बड़ी भुख है मेरा चित करदा मैं हर वक्त साथ संगत दी धूड़ी विच बैठा रहां।

जिस तुम आप कराए। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जदो करानो जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं देखा असी बैकुंठ क्यों।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह कोई पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहंदन गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब दा दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले लईए इस गल तो जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हजूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जाते हैं। संगतां अंदर गई बेबल हो गई जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकना ओते सिंघासन ते विराजमान ने बाबा बुड्ढा जी तो पुछिया कि बाबा बुड्ढा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया आख्याओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आयो ओते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। आके बाबा बुड्ढा जी ने पूछा पातशाह जोड़िया विच की कर रहे हो संगतां दर्शन करने वास्ते आई हैं जोड़िया च की लभ रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहंदे ने बाबा बुड्ढा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए। मैं सुनिया कि जदों सात संगत कट्ठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा। मैं सुनिया कि सात संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां के हसी के किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जाण। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां।

सत्संगत नूं कह दिओ थोड़ी देर होर रुक जां। मैनू इस रस तू ना तोड़न, गुरु नानक दा जोड़ा लभ जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता, जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया, जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता के धरण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन।

सिमरन तो खाली ने गल्ला नाल आसमान ते चढ़ जांदे गल्ला नाल ही आसमान नूं थले ले आउंदे कहंदन के जिहड़े सिमरन तो खाली ने कबीर साहब कहंदन उन्हां तो सदा डरदे रहिए।

राम राम करदा है पर सारिया नू ओ राम मिलदा नहीं। क्यों? सिर्फ राम राम कहन दे नाल राम नहीं मिलदा, ओदो मिलदा है जदों मनो कहा जाए। राम राम कह लिया, सारा दिन झूठ बोलिया, ठगियां कीती, ओ राम किवें मिले। राम राम करन दा मतलब ए कि कोई माड़ा काम नहीं करना, किसे नूं सताना नहीं, किसे नाल धोखा नहीं करना, तां ओ राम मिलदा है। नहीं तां कोई फायदा नहीं राम राम कहण दा, जे मन विच सच नहीं, मन जुड़िया नहीं। साहब जी कहिंदे नहीं, कहण नूं तां सारा संसार कहिंदा पर सारिआं नूं राम थोड़ा मिलदा।

पाई है। उस परमेश्वर की कीमत कोई नहीं पा सकता, ते ना ही पैसों के नाल ओ राम किधरों मिलता है। गुरु साहब ने कहा, जो कोई इंसान ये कहे कि पैसों के नाल मैं रब नूं पा लवांगा,

माथे तिल, मत्थे दे तिलक ला ले, हाथ विच माला फड़ ले, ते राम राम कह लिया, थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया, ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए। भगत जी कहिंदे ने नहीं।

लोगन राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले। कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने। ऐसे तरह लोग रब नु समझदे ने। जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरु कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं ओ राम कोई खलौना नहीं बच्चा नहीं जेड़ियां तुहाडियां गल्लां ते ओ खुश हो जाएगा।

उस पुजारी ने ते राम नू खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नू मन विच नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नू राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहिंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के, ओ बौरा नहीं जिन्हू लोग पत्थर मारदे ने।

लोग जेड़े ने मैनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना पूजा करदा है ते ना ही फुल

रोग मरण कह जाने मोरा। ये जड़े लोग ने ये मेरा मरम, ये मेरा दर्द, ये मेरा प्यार नहीं।

कबीर बौरा है, ए कबीर बौरा है, ए पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

मठे गए उथे काजिया ने सवाल किया ए बाबा नानक ए दसो हिंदू वड्डा है के मुसलमान उस रब की दरगाह दे विच मुसलमान नु जगह मिलेगी के हिंदू नु गुरु नानक साहब उन्हां काजियां ने की कहंदे ने

कपड़े नु रंग चाड़ो तो वो सारा रंग उतर जाता। इस तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नु वखरा वखरा करके समझदे ने, समझो कि उन्हां उते राम दा, अल्लाह दा, वाहिगुरु दा रंग चढ़िया।

कैडी सोहनी गल कही धन गुरु नानक साहब ने। करण बखीली आप विच राम रहीम एक साए खुलो। करण बखीली आप विच ए लोग आपस विच लड़दे ने, कोई कहंदा राम वड्डा कोई कहंदा रहीम वड्डा, पर गुरु साहब जी कहंदे ने अजीब गल तां ए है ए लोग आपस विच लड़दे ने रब दे नां ते, उहनू राम कहो उहनू रहीम कहो ओह तां इक्को ही है। जिन्हू लोकी राम कहंदे ने रहीम कहंदे ने अल्लाह कहंदे ने ओह तां इक्को ही है, इक्को जगह खलोता है, पर लोकी एवें

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहते हैं सिख किवें हो सकदा ते रहत तो बिना वो चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

फरमावे मैं चुपे पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने ओनू राम ओनू वाहेगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदा पर सारिया नू

मैं किससे बोलूं, डरता नहीं, सिर्फ आप दुश्वा परमेश्वर दुश्वा। मैनू किसी ने नहीं मारिया, जे किसी ने मारिया भी है ते बादशाह उन्होंने खिमा कर दे। पर साहबा नु गुस्सा सी इस सेवादार नु मारिया, जिहड़ा 24 घंटे सेवा च रहिंदे सिमरन विच रहिंदे। साहबा ने कहा जिन्ने भी इस सिख नु मारिया वो अपने आप हाजिर हो जावे, नहीं तो बहुत बुरी सजा दी जाएगी। जिन्ना ने सिख नु कुटिया सी उठ के खड़े हो गए, आके चरना ते डिग पे, कहन लगे पातशाह सानू खिमा कर दियो। साहब जी कहन लगे तुसा इन्हू क्यों मारे है? कहन लगे महाराज इस करके कि तुसी जदू भी आंदे सी इस सिख नू गले लगांदे जिदे कपड़े भी गंदे हुंदे ने, साडे वल तुसी देखदे नहीं, इस करके असी इन्हू मारिया कि ए मर जाएगा ते तुसी साडे नाल प्यार करो। साहब जी कहन लगे भाई जे मेरी खुशी लैनी उस गुरु नानक दी खुशी लैनी ता सेवा करो। मैं शरीर दी सुंदरता चंगे कपड़े दे के खुश नहीं हुंदा, मैं ता मन दी सुंदरता देखना। एदे कपड़े भावें मैले ने पर एदा मन सुंदर है, ए सेवा करदा है, सिमरन करदा है। हुण उस सिख ने हाथ जोड़े जिन्हों कुटिया सी, कहन लगा पातशाह कृपा करो इन्हां नूं भी बख्श लो, भावें इन्हां मैनूं मारे पर इसे वास्ते मारे कि तुसी इन्हां नाल प्यार करो। साहब जी कहन लगे हां तू कहना है तां इन्हां नूं माफ कर देनी। हुण ओ जिन्हां ने सिख नूं कुटिया सी हुण सेवा विच लग गए, सिमरन विच लग गए। साहबा ने कहा सेवा करो, सिमरन करो, तुहाडे ते वी ओह गुरु नानक दयाल होवेगा। ते भाई जिहड़ा ना सेवा करे ना सिमरन करे ओनू किवें आराम मिलेगा? कई झाड़ू भी मारनगे ते मन विच ख्याल होवेगा सानू कोई देखे आखे कि ये सेवा कर रहे, एहो जी सेवा से ओ दयाल नहीं।

खेत वाल जा रहा सी, जाके ठाकर खूह चल रहा सी, थले रख दिता। आखे ठाकर जी ए तरदोल चंदा कर रही, इथे पानी दी थोड़ है, ए जट्टा खूह है, सब कुछ इथे ही मिलेगा, ताजिया सब्जियां मिल गया, नहाने की बड़ी मौज है, वेखो खूह चल रहा है, आप ही हुण इशनान करो ते मैं नका मोड़ा मां। मुक्ति गल इशनान कराया, तन्ने ने मल मल के नका मोड़ के आ गया, हुण भगवान बाहर रख दिता है। इतने चिर नूं तन्ने दी करवाली आ गई प्रसादा लैके, बड़े ही प्यार दे नाल ठाकर नूं परने उत्ते रख दिता है। रुखा सुखा जो सी एक कृति दे करों आ गया। तन्ने ने अर्ज कीती, भगवान जो गऊ सूई सी उह ते हुण आप जी दे बटांदे विच पंडित जी ने लै ले गए, हुण ते आपां जो कुछ भी करो रुखा सुखा आया है उही खाना है, फिर कोई बात नहीं, दो चार महीने तक दूसरी गऊ सुन वाली है, लहरां दा रबण जा बणगिया, आओ भोग लाओ। हुण उसने पता नहीं सी भोग लाउणा है कि खाना है। काफी समा बहन तो बाद उसने स्त्री नूं आख्या, तुसी जाओ जी घर नूं, शायद ठाकर दी संगत ना होवण, तुसी चले जावो, अजे ठाकर नवा नवा आया है, साडे घर दे बारे तो जाणू नहीं। घर वाली तोड़ दित्ती, हुण तन्ना जोधड़ियां करदा है, अर्जना करदे है, भगवान खा लो प्रसादा, वेखो मैं भी कल शाम का ही भुखा हाँ, सवेर का मैं कुछ भी नहीं खादा, दिन ढाले पै गया है, शामा पै रही हैं, वो राही राहे राहे जा रहा है। उसने सुनिया एक आदमी पत्थर के नाल गल्लां करता है, भगवान जी खाओ ना कुछ ना कुछ। उस आदमी नेड़े होकर सुनिया, वेख्या कौन है, ये तो तन्ना जट है। आख्या ओ तन्या, पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की, तन्या पत्थर ने सुनते फरियाद किसी की। तन्ने ने अखा खोली, आख्या जाओ जी जाओ, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। हुण अगली शाम भी पै गई, तन्ना हुण आ गया है अपने जटपुणे ते, भगवान हुण तू मेरे वल देख ले, मेरिया आंदरा हुण भुखियां बिलक रही हैं, हो सकता है तेनू पंडित ने कुछ तरोताजा चीज खुआई होवे, तेनू भुख नहीं लगती। जिस तरह दूसरे दिन का दोपहर आया, तन्ना बजट बचा गया, ऐ भगवान वेख ले, मैं मर जाना है तो तेनू मार देना है दात्री उठा ले। भगवान का सिंघासन डोल गया,

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नूं किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहने की जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नूं महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ, ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मोहे दूजी नाही ठौ जिस कह हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण च आंदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघिया है, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ की, जदों इल्तजा की, जदों खाली ठूठा अगे किया, तो उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर के अगों की आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेन क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों ने? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आख लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ कर दई है। आडीठ धर्म अत टीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा क्योंकि मैं निश्चा धार लिया।